ये आकाशवाणी ले की आवाज़ है। सुबह के 7:32 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए साकीना खातून से प्रोग्राम रोशनी।

0: पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की दो दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। अमरीकी और इजरायली हमलों में उनकी मृत्यु के 4 महीने बाद हुआ अंतिम संस्कार। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ है। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में 3री ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
0: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
2: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
0: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा क्रिकेट सहयोग, खेल अवसंरचना, आईपीएल बीबीएल साझेदारी और 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक और भारत की 2036 में ओलंपिक के लिए बोली सहित प्रमुख वैश्विक खेल आयोजनों से पहले सहयोग पर केंद्रित थे। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों और भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। एक रिपोर्ट।
3: यह बैठक इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि ऑस्ट्रेलिया की संसद में भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का व्यापक और मजबूत समर्थन प्राप्त है। रणनीतिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यूजीलैंड का सच्चा मित्र बताया। दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि यह

0: आयोग राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिखर वार्ता के प्रमुख निष्कर्षों के अनुरूप श्री टेलर ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के निर्यात का समर्थन किया। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए ऑकलैंड पूरी तरह तैयार है। यहाँ बसे भारतीय समुदाय के साथ साथ स्थानीय न्यूजीलैंड वासी भी पारंपरिक माओरी अभिवादन किया ओरा मोदी कहकर उनका स्वागत करने को उत्सुक हैं। महिलाएं, युवा, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और विभिन्न सामुदायिक संगठनों के सदस्य इस यात्रा को भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत मान रहे हैं। उनका विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा व्यापार, शिक्षा, निवेश, खेल और सांस्कृतिक सहयोग को नई गति देगी। प्रवासी भारतीयों का कहना है कि करीब 4 दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आगमन उनके लिए गर्व, सम्मान और भावनाओं से जुड़ा एक ऐतिहासिक पल है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड से।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मेलन में उपस्थित रहे।
4: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत पलायन रोकने, रोजगार सृजित करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का शत प्रतिशत कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। भारत म्यांमार सीमा पर 31,000 करोड़ रुपए की लागत से बाड़ लगा रही है। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने इथेनॉल

0: वर्तमान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना था। इसके बाद गुजरात ने अपना यूसीसी कानून पारित किया, जबकि असम इस वर्ष ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में अंतिम विदाई दी गई। हजारों समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए। ईरानी मीडिया ने बताया कि उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफा खामनेई ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की। इस वर्ष 28 फरवरी को अमरीका इसराइल के हमलों में आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी। और अब खेल खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहले हाफ में कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट और उस्मान डेम्बेले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। विंबलडन टेनिस में महिला सिंगल्स का फाइनल चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। लिंडा नोस्कोवा ने सेमीफाइनल में यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक को हराकर पहली बार विंबलडन और ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाई है। वहीं कैरोलिना मुचोवा ने अमेरिका की कोको गॉफ को हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद फरहत। भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीदने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, भारत को ऑस्ट्रेलिया करेगा यूरेनियम की आपूर्ति, गगनयान मिशन में भी देगा साथ। जनसत्ता के शब्द हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया में रक्षा करार, व्यापार सौदे पर तेजी से काम। अंतरिक्ष में भेजा दुनिया का पहला कमर्शियल परमाणु संचालित सैटेलाइट। सफल लॉन्चिंग, अंतरिक्ष में ऊर्जा के लिए सूरज पर नहीं रहेंगे निर्भर, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। आसमान बरसा, NCR थमा, 3 साल बाद दिल्ली में एक दिन में हुई सबसे ज्यादा बारिश। नवभारत टाइम्स ने कल बारिश से बेहाल लोगों की अलग अलग तस्वीरें प्रकाशित की हैं। पत्र लिखता है, सड़कों और अंडरपास में भरा पानी, कई जगह लगा जाम। दैनिक भास्कर ने बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व के खुलने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, पहली बार बीजापुर के जंगल में सफारी, 40 साल जिन नक्सलियों ने आने से रोका था वहीं पर्यटकों को घुमाएंगे, प्रशिक्षण देकर नक्सलियों को गाइड बनाने की है तैयारी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर पश्चिम एशिया पर फिर से अस्थिरता के बादल मंडराने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, आक्रामक ट्रंप से अस्थिर दुनिया। पत्र लिखता है, जब तक व्यापक बातचीत के जरिए हॉर्मुज जलमार्ग का विवाद नहीं सुलझाया जाएगा तब तक अमेरिका और ईरान दुनिया के अन्य देशों की परेशानी बढ़ाते रहेंगे।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की 2 दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7-सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुष T20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

skies mode to tezuk kitena tus tene zapik kaspo yode tus la kitena chalas kun demona yambu nyanche se pi halale tene sokpo guni kitena gyagar kitena chosi yul tapo jik thia jati du mola jati du halale tene chujul jik ma rigjung chukpe yul jik tezuk yul jiga ngozin churu mola jati du halale tena nan kitena nampa sangye se standby kitena gyagare na yot kya te songpa ma chosang rigjung chukpe kitena ग्यालखाप ची कहते ना सोपो गुने तेने ग्यागर बो ऐसी रुक मोला चाहते तो खाला ले ता गोमा कहते ना रिम्बोचे स्कूंडून तेने सोगियुल ला कहते ना कोंगे ट्रस्टोक्स चेमे ना या माने कोंगे पर्ली मेने ना कहते ना सोग दू सोग से स्काफ सु कहते ना कोंगा तेने जुंगरेल ना तेने मी सामान ना तेने कोंगे कहते ना स्पोनबो गुना या पूजा ठाट जाचे से तुझ ला कहते ना गोमा रंग रिम्बोचे स्कूंडूने ते वो मोल पेन मोला चाहते तो कहते ना तेने ग्याटाक चुकसुम ने चुबजी भी पार ला खेते ना नंगपा संग्यास भी छोसपु खेते ना सोगुल्ला लेप्सक्या तेज आने खेते ना दंगपु संग्यास चुमदान दसे सुंग भी खेते ना ग्यागारे थुजमी छुल्ला या माने ग्यागारे तेने जुलो ने छुल्ला गोमा तेज आने लेप्सका नो मोला जाते मोलते तो खाला ले तेज सिंह ने माने रिम्बोचे स्कुंदुन खेते ना तेने सोगुल्ला ता थुजमी जाते ना तेज सिंह ने लेप्ते नो जुस्ते मोलपेन मोला जाते तो खाला ले तेने चिलो चिक्सतुंग गुबग्या दुंचू ने तेने चिलो चिक्सतुंग गुबग्या केचु केरुक पर खेते ना तेने गुस्मेत चिगा खेते ना चावानास मीन क्या कापतेर सोगयुल ने संवातंग ते तुस पे नंगा खेते ना तुसो पे खेते ना चपी कास्पूरी तेने स्पेरागुन ने शाद मियाँ जैसे तुष्टिक संवेद तुष्टिक इन पिन तेने जाटा के तुष्टिक इन पिन तेने चप्पी खोए ना मिडिक्स परी गांग योट पिन मोला चाहते दुखाला ले इन नां ते तुझला कहते नां तेने रावण एपिया बदकान नां तेने ने कम्युनिस्ट या ना मरपे तवा बोरगोशरा जरकाने स्पेरा डुलिन धुपीन मोला चाहते दुखाला ले तेने तेज आने कहते ना रिम्बोचे स्कुंदू ने कहते नां रिम्बोचे स्कुंदुल ना तेने कावन कहते ना मांसू रिंगलुक्स ख्योंचे ला था दा तेगुन के तेना मंगयुंग रिम्बोचे जाला योंग मोला जाते दुख तेने खोंग के तेना गेरगी तेने खोंगुन ना यहाँ पूर तेने थुक्स थे तेने लाभजारी के मंगयुंग साला जात बेन मोला जाते दुख खाला ले ता चीन ना तेने न्येलेन लास लुबुर दु जीवे ये थुकनास पुगुर चेन पुजी जुंग लो खाला ले तेने लुबुर लो के तेना हुनमेच चिका के तेना ते सोखला के तेना गुरुवा छेनमो जी के तेना सोगुले नंगा योंग मोला जाते तो तेने सोगुल नि के तेना एशिन गेलखा बे नंगा के तेना गोमारंग मारपे लुक्स या माने के तेना मारपे तवा कम्युनिस्ट जुंका ने तेने युल तंगपो इन इनो मोला जाते तो तेने यांग तेने सोगुल बु के तेना गोमारंग के तेना तेने मारपे तवा या माने के तेना कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ फंका नांग गोमा इसी गेलखा पो गिरते योते नो मोला जाते तो हाला ले ता ची नांग तेने खोंचो ये थपचो की नांग मोज रंग नामे दुच्छो चिंग हाला ता खोंगे के ते नांग ते थपचो पे नांग ता मिमांग वंशुल गोशिरक मुलकान दांग तेने मरपेल तावा बोर गोशिरक जिरकाने ते थपचो पे नांग रिम्बोचे स्कुंदुन नांग तेने नामे चिगा लेपसोंग तेना लेप्स राग मोला जाते तो खाला ले ता इन नांग तेने खोंगे गेर ला मंगयुन लामसो नांग जात पेन मोला जाते तो तेने मिमांग से तेने लुक्स हाले मिमांग मंग लुक्स के तेना कोल गोशिरक मुलकान गुन के तेना रिम्बोचे या तेने गेर की जार मांग यांपू तेने रिम्बोचे स्कुंदुन नांग के तेना लबजा मंगयुन सा ला जात पेन मोला जाते तो ता ची नांग तेने कुले कुले कुले कुले के तेना तेने मिमांग मंग लुक्स पो के तेना तेने सोगुल बो गुर्स मोलते तो ता सोगुल बो के तेना मिमांग मंग लुक्स गुर्चे से ना रिम्बोचे स्कुंदुन ने छगलास नांग तेने तेज को लाके तेना मंगयुंग तेने छखपार गुने नांग बींग्स मोला जाते तो गेर लाके तेना रिम्बोचे स्कुंदुन ने ते लाबजा सलका निस्पेरा गुना जलता गुना तेने इन नांग ते लेमो बो तेज क्यों मोला जाते तो तेने स्टिंग ने के तेना रिम्बोचे नांग यांपो तेने तेने मारपो हिस्तावा के तेना मोजलेन चुकान गुने मी गुने मिगुन थुक जाना के तेना खोंग ना के तेना रिम्बोचे स्कुंदुन ना तेने सोपे ना सोगुले ना गुरुवा योंसेस ला तेने मा देमो ना यंपु जीवा ना यंपु गुरुवा जी योंसेस पु ग्याला सोंग मोला जाते रिम्बोचे स्कुंदुन ना तेने ने खोंग ना थापु खोंग ना तेने थापु मुंजुक मोला जाते दुखाला ले ता त
Tene, tesok like it and Zatak, Nang Tene, Sewa, and Tene, Tizuk made per Zide Tornikitan, Tene, Mimang, Mangluk Sikitan, Sovil Gurpasang, Tene Sama, Tene Tapu, Song Molazat, Jumbojuskund Halale. Tene, Ta Gomarang, Tene Kong Pier, Scalas, Chenmo, which in Pin Molazat to Juna, Tene Gomarang, Tene Sovil Wiketanang, Ta Mimang Mangluk Si Tene. Yulji Guranang Yamputa, Goma, Kazuksika Ketena, Mimang Mangluxi, Tenete Lux Puketena, Te Timgun Ketena, Kazuksika, Laglen Chuin Zerkanbo, Ta Teuketena, Scalas Chenmuji, Yupin Molazatu. Tasting ne, Tene Kongrang, Tene Zilu Chanla, Tene Tongsesla, Jung Molazatu, Tene Dembarang, Tene Tene Mimang Mangluz Yongsi, Stingbuni Ketena, Tene. Zam Shigi Sokpe Ketena Mimans Yot, Mimans Ketenang, Kazuk Ketenang, Mimans Chukpo Indu, Tene Parpa Indu, Tene Mimans Ketenang, Yang Nyalvachan Soks Indu, Tsangme Tene Tsoe Skeltang Sena, Yamane, Mitsiputang Sena, Dembarang, Mimang Manglux Yong Sisting Mune, Tsangma Yargas Gala, Danyametone, Nyom Spochus de Cha Ketenang. Dembuches kundunai, tene kongrai, zix molazatetuk, tesokla ketena, tene soryulenanga, mimang mangluk spuketena, ma demojina nyampu, tene soryulenanga, kulekulia ketena, yasin yasin, tene soryulenanga, mimang mangluk spuketena, tanpu chakanbu, dembuches kundune, diazatetuk, tukzeche.

0: इबो आकाशवाणी ले इन कसते यंग चंडोल मा नचु सनचात उजुंगते जुंगछि रिलास कुंसो से नंगा लश्चित पागुनी कोसा पर्चे स्पर्चिस तंगदेलते कमिटी छक्सपा तंगलास दे का लेनकन कुलना कोनस्तोंग पागुल ताचे सिलास टुली न्योत कानबा टोंगची आशीष कुंद्रेश के जिप चातेनो इतु शेदा जात कान नंगजिन कोनस्तोंग पास तोंग चिक तंग जिप के सुंचु सबजी केंदार कंचे ला यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ला कालते योत कान तंग कोनस गिप के गुपचु कोंगा लस्कुंग सोसे लश्चित पागुलना कोनस पर्चिस तंगयापो लसना तंगचे सिला सिडुल न्यूत खान स्कूल ला शदा चाते नो इना तुजा टोंगची आशीष कुंद्रे जन यंग कोनस तोंग पागुनी लस लसत कुन सोसे का थेरे ले लसिर डुलुस ते योत खान गुलना टीसो सालिन जिकता इ लस गुने का लिंचे से छिर का गुन ग्योक्स पा डुब चुक चे ला शे चलते नो यंग खोंग इस ने थुप ओडरली कोनस दुनगे गेचु केरगु को स्कोकर ने का स्पेल ते योत खान इला सिर गुलना जिक सजा ते नो तिंगजिन कोनस तोंग पेस कोला चोचा गुन सल्पो नंगे पो जाचे जंग मोलते नोक लदा से चुली दुबई तंग जन यंग जमनी स्टील दने छोंसा गुनी का चोंचे से पिया कलचे ला एमओयू जिक लल्लू ग्रुप तंग यंग पो जाते योतखान नंग जिन तालो चुली मेट्रिक टन तोंग चिक खेचे से पिया टोंगची आशीष कुंद्रेश के जी बोर्ड ते एमओयू लगले ने खोंचे ला सुंग रो साते नो इतुस खोंग चुली नासा सोसे ने चम शि खोंग छरते यो तंग ते गुनले तंग करगिल ने खाचुल सुख पास्कल रिन चोचेस तंग टेस्टिंग ने खाचुल ने डेली सुख पास्कल रिन चोचेस सेला सिडुल इन योत कान स्कोर लंग शदा चाते नो इन तो द सिंगटोक लास खोंग इटोंग इस शदा जात खान नंगजिन मिक्सल इन नम टूर क्युते जुलाई दे छे चुबजी सुख पा चुली छोंगलास खाक तंग पो यूएई एक खेचिस इनकान स्कूल ला शदा जाते नोक सोजुंग सनु मिलुन पो हरदीप सिंह पुरी शदा जा चेजला जुंग इस ई 85 फ्यूल मोटो जा मोटो क्योक्सपा जा चेजला छगला जा दिन योते नोक या इ ल सजनु बो लीटर ला ई 20 सजनु मासंग पेनेर गोर निशु रिन न्यूंग न्योंग चेस इनोक यांग तेन चोला ई सजनु बो ई 85 कोल न्यान खान मोटर खोलो गुनिनांगा कोल चेस नो इ चोक्से गोजुक जा चेस सेमिगुल बो सजनु न्यो थु पतंग चेस ता इथेनोल शेका ने सजनु कोल चेस लायर के तंग चेस बोइनोक मोलते नोक उजू गजे नंगा सिंगल यूज प्लास्टिक तंग जुए लसकुंग गुने नंगा प्लास्टिक की छुई बोटल गुन कोलचे ला गक्चा तंग से होते नो गक्चा तंग से युद्ध का निस्कोल ला जून इल देश से निशु सर्गुई जगह का क्या स्पेल ते युद्ध का नंग जिन प्लास्टिक की बोटल ही छुई बोटल गुन छुई एक संग चुंगी एक संग युन्ता निस्तोनस यूनिवर्सिटी बोर्ड कॉर्पोरेशन तंग ऑटोनोमस बॉडीज कुने ना कोल्चे दा गक्चा साल ते होते नो यंग कोंगुल ना थुंची थोकने यंग यंग कोल्चे तंग खोरुक तंग स्तुन ते योत कानी चुंग नोट कोल्चे दा मोल ते होते नो ते ना चोला सिंगल यूज प्लास्टिक प्लास्टिक कोल्चे चोंचे सक्चे तंग गोस्ते तंग चे दा गक्चा तंग स्ते होते नो यंग किमसा नसा गालियो ला फंगचे दा गक्चा तंग स्ते योते नो सुजीज गक्चा का खेपी गाब गल जात ना पेनिश तोंग छतपे छुला कालचेज होते नो यंते ना चोगला स्टोंग चू सिंगल यूज प्लास्टिक कोलकानी गैप का ला तक कालचेज होते नो लता कुछ जो आज दे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कुनी नांगा साल सो से जोंगदा रेपे एडमिशन लेंचेज ला तुस्ता स्केते होते नो यंजूस कुन ऑनलाइन ने का लेन इंजिक तंग नो यंग यंजूस कंचे से स्टिंग जुगी सेस्टंग जुलाई सेस चू यंग ना दिरिंग बोलते होते नो इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन एटिपा डॉक्टर राकेश मिश्रे शादा जात का नंगजिन प्रो बॉक्सिंग लीग जाचे से मिगुल बो बॉक्सिंग सालिया लायर गया तंगचेस तंग जमनी चील दाने का सालियांग से डंदूर ओलंपिक चोक्स कुलना यर्गेस तंगचेस पुइन मोलते नो
1: हमने देखा कि बॉक्सिंग की स्थिति को और अच्छा करना है हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों में ओलंपिक में मेडल विजेता बनना है तो यह एक ऐसा खेल है जिसमें 14 वेट कैटेगरी में 14 इंडिविजुअल मेडल आ सकते हैं उसी कल्पना में देश भर के 25,000 खिलाड़ियों को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों से अलग अलग जगह से निखारते हुए 32 खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ है और उनके लिए यह प्रोफेशनल बॉक्सिंग लीग शुरू की गई है कॉमनवेल्थ हो चाहे लॉस एंजल्स ओलंपिक की तैयारी हो उसके बाद भारत में होने वाले ओलंपिक की तैयारी हो सभी में इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे उसके लिए ही हमारी सब तैयारी चल रही है और यह तैयारी का असर आप देख रहे हैं कि खेल को लोकप्रिय भी बनाना पड़ेगा केवल खिलाड़ी तैयार करने से काम नहीं होगा अच्छे रेफरी और जज तैयार हो इसके लिए हमने एक साल में 59 रेफरी एंड जजेस को भी तैयार किया है
0: Sojung is Razori Lon Kung is Henlum Hekaton Nistong Ishu Saruko Zukzate, Tarzui Laska and Azotaps Kunches, Ipsoma Tanches, Tongla Dayergas Tanges, Stanji Zotas Pinches Illa Siri Kachiginok, Henlum Hekaton Nistong Ishu Saruko, Yulidani Tarzui Jarsichis Tangapo, Talixatenok, Ina Tukar Lincoln, Zopa Gunis, Inaldeces, Nishu Tukpa, Online Guter Kanganches, and Hekaton is Tingju Gizatko, Foundation for Innovation and Technology Transfer, IIT Delhi. Katalik zatce setik ribet tenok. Lelumtin kah istingman nasul ngimi cutur ngis tangskar mangap jungai ka sanche lapulca setu sadin. Yang lelumtin kah nasul kunci cok spell nama ka ngijeranggulna sanche lapulor custeo tenok. Kacang kunjuna YouTube ka ARL News, Facebook ka ARL News tang, X ka ARL News at parser berti ka sanche lapulor custeo tenok. Ina tang nyampo agashwani lene tanasul ton.

0: नशे आकाशवाणी लेने शुंचिकताएं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दीप,
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
1: अच्छा।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

दास रंगे तुम्हारी कसम फिल्मिलो मुकेश तंग आशा भोसले ने सना चांस फिल्मिलो टिग्रिम पे ना कसता शर्मीली फिल्मिलो लता मंगेशकर तंग किशोर कुमार ने सना चांस लुरसुम खन नीरज यांग लुयांस रिखन एस डी बर्मन।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति व्यक्त की है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ है। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों

0: के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
1: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र। ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का भी दौरा किया। दोनों नेताओं ने ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी किया। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, व्यापार, शिक्षा, हिंद प्रशांत सुरक्षा, निवेश और जनसंबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत ऑस्ट्रेलिया के मजबूत संबंधों के लिए द्विपक्षीय समर्थन की पुष्टि की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों और भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड की यात्रा होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना है। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता यूसीसी का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र विधानसभा में इसकी घोषणा की। ये समिति अगले 6 महीनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में नागपुर में विधानसभा के दोनों सदनों के समक्ष एक समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने पर विचार कर रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के लिए उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में अंतिम विदाई दी गई। हजारों समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए। ईरानी मीडिया ने बताया कि उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफा खामेनेई ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी करी। इस वर्ष 28 फरवरी को अमरीका इसराइल के हमलों में आयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी, जिसके बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में संघर्ष तेज हो गया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल की तराई क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3-4 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश के आसार हैं। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi, along with Australian Prime Minister Anthony Albanese, visited the iconic Melbourne Cricket Ground today. The visit highlights the growing role of sports diplomacy in India-Australia relations. The discussions between both the leaders focused on cricket cooperation, sports infrastructure, athlete development, knowledge sharing, the IPL-BBL partnership and collaboration ahead of major global sporting events, including the 2032 Brisbane Olympics and India's 2036 Olympic bid.
1: भारत ऑस्ट्रेलिया मैच का रोमांच और दूसरा यह एहसास कि दोनों देशों में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं लेकिन एक साझा जुनून है। लेकिन आज यहाँ कोई लास्ट ओवर फिनिश का प्रेशर नहीं है, आज यहाँ केवल खेल की खुशी है, हमारी मित्रता की गर्मजोशी है

नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आज सैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की दो दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुरपुर्द खाक किया गया। अमरीकी और इसराइली हमलों में उनकी मृत्यु के चार महीने बाद हुआ अंतिम संस्कार। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 के अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी

0: योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
0: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र। ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा क्रिकेट सहयोग, खेल अवसंरचना, आईपीएल, बीबीएल साझेदारी और 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक तथा भारत की 2036 में ओलंपिक के लिए बोली सहित प्रमुख वैश्विक खेल आयोजनों से पहले सहयोग पर केंद्रित थी। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, व्यापार, शिक्षा, हिंद प्रशांत सुरक्षा, निवेश और जन संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत ऑस्ट्रेलिया के मजबूत संबंधों के लिए द्विपक्षीय समर्थन की पुष्टि की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों और भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा भी करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। ऑकलैंड से हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर वे बेहद उत्साह का माहौल है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए ऑकलैंड पूरी तरह तैयार है। यहाँ बसे भारतीय समुदाय के साथ साथ स्थानीय न्यूजीलैंड वासी भी पारंपरिक माओरी अभिवादन किया ओरा मोदी कहकर उनका स्वागत करने को उत्सुक हैं। महिलाएं, युवा, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और विभिन्न सामुदायिक संगठनों के सदस्य इस यात्रा को भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत मान रहे हैं। उनका विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा व्यापार, शिक्षा, निवेश, खेल और सांस्कृतिक सहयोग को नई गति देगी। प्रवासी भारतीयों का कहना है कि करीब 4 दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आगमन उनके लिए गर्व, सम्मान और भावनाओं से जुड़ा एक ऐतिहासिक पल है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड से।
1: न्यूजीलैंड में समय आशा, स्मरण और नई शुरुआत का प्रतीक माओरी नववर्ष मातारिकी मनाया जा रहा है। इसी शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड की अपनी ऐतिहासिक यात्रा शुरू कर रहे हैं। मातारिकी उत्सव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक पड़ाव भी है। ये केवल दोनों देशों के नेताओं की मुलाकात ही नहीं बल्कि दोनों देशों की संस्कृतियों, परंपराओं और साझा आकांक्षाओं के संगम का प्रतीक भी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्कारी ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। ओमान यात्रा पूरी करने के बाद वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान की शुरुआत करेंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में अंतिम विदाई दी गई। हजारों समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए। ईरानी मीडिया ने बताया कि उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफा खामनेई ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की। इस वर्ष 28 फरवरी को अमरीका इसराइल के हमलों में आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई थी, जिसके बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में संघर्ष और बढ़ गया था। खामनेई की मृत्यु के बाद उनके बेटे मुस्तफा खामनेई को ईरान का नया सर्वोच्च नेता चुना गया। मशहूर वेल्श गायिका और गीतकार बोनी टायलर का कल पुर्तगाल के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 75 वर्ष की थीं। टायलर के परिवार ने उनके निधन की पुष्टि की और बताया कि इस वर्ष मई में हुई उनकी आंत की सर्जरी के बाद उनका इलाज चल रहा था। बोनी टायलर का मूल नाम गेनर सुलिवन था। उन्होंने संगीत जगत को कई सुपरहिट गाने दिए, जिनमें इट्स आर द हार्ट और होल्डिंग आउट

0: बोनी टेलर के करियर के 3 ग्रैमी नॉमिनेशन में से एक बार वो इसी गाने के लिए चुनी गई थी। और अब खेल खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
1: फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहले हाफ में कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट और उस्मान डेम्बेले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। विंबलडन टेनिस में महिला सिंगल्स का फाइनल चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। लिंडा नोस्कोवा पहली बार विंबलडन और ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाई है। वहीं कैरोलिना मुचोवा ने अमेरिका की कोको गॉफ को हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल भी आज खेले जाएंगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज से इंग्लैंड के खिलाफ ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर अपना पहला टेस्ट मैच खेलेगी। उधर ब्रिस्टल में खेले गए चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में कल रात इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। मैड्रिड में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 4 में भारत के धीरज बुमदेवरा और कीर्ति शर्मा रिकर्व मिक्स टीम स्पर्धा के कांस्य पदक मुकाबले में पहुंच गए हैं। अब कांस्य पदक के बीच कंपाउंड स्पर्धा में भारत ने पहले ही एक पदक पक्का कर लिया है। भारतीय महिला टीम फाइनल में पहुंच चुकी है।
0: ब्रिटेन के कई सांसदों ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में बढ़ती अशांति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। इस क्षेत्र में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बर्बर हमलों में कई नागरिक मारे गए हैं या घायल हुए हैं। इस क्षेत्र में सख्त लॉकडाउन, कर्फ्यू और संचार व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। ब्रिटेन की संसद को संबोधित करते हुए कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और सांसद बॉब ब्लैकमैन ने कहा कि पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने POJK में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की है। इस हमले में ब्रिटिश नागरिक सहित कई लोगों की मृत्यु हुई है और नागरिक घायल हुए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की 2 दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्द खाक किया गया। अमरीकी और इसराइली हमलों में उनकी मृत्यु के 4 महीने बाद हुआ अंतिम संस्कार। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और पुरुष T20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, सुप्रभात और सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं प्रियांशी और समय हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम दिल का मेलबॉक्स का। यहां आप सभी के मनपसंद गीतों की सुरीली माला लिए मैं हाजिर हूं। तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आप हमें अपने प्रिय गीत और संदेश ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं या हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि हम आपके सभी संदेशों को कार्यक्रम में सम्मिलित करें। आपके मन में हो कोई बात, कोई दुआ, कोई छोटा सा संकल्प या खास संदेश, तो उसे भी अपने प्रिय गीतों के साथ हमें अवश्य भेजिए। तो श्रोताओं, जल्द ही लिख भेजिए हमें अपना मनपसंद गीत, संदेश, नाम और शहर और भेज दीजिए fmgoldairdelhi@gmail.com पर। मैं पुनः स्पष्ट करती हूँ, fmgoldairdelhi@gmail.com। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868868753, यानी 9868868753। क्या पता श्रोताओं, कहीं अगली सुरमई धुन आपकी ही पसंद से चल पड़े। आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस धुन के साथ।

आइए श्रोताओं, संगीत की इस दिलकश लहर के बाद अब खोलते हैं आज का दिल का मेल बॉक्स और पढ़ते हैं आपके संदेश। महाराष्ट्र से संदेश प्राप्त हुआ है हमें राजेश कुलकर्णी, गौरी कुलकर्णी और राघव कुलकर्णी का। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी और बेबी आलिया भी हमारे साथ जुड़े हैं। आयान बाबू भी इनके साथ हैं। धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान और पूजा हमारे साथ हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से अहमद भाई फूलवाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही, इमरान, आमना, आसमा, आशु और समस्त फूलवाले फैमिली हमारे साथ जुड़े हैं। मुंबई से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा से अंकित कांगड़ा, मोनी, प्रिंस और सीताराम कांगड़ा और साहिल कांगड़ा हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का भी धन्यवाद। आइए श्रोताओं, सुनते हैं अब युग्मिता केश और महुआ केश की फरमाइश पर कोलकाता से इनकी फरमाइश आई है इस गीत के लिए।

श्रोताओं, संगीत ने तो माहौल सजा दिया और बाहर भी सभी जगह बरसात के आसार लग रहे हैं। तो आइए देखते हैं आपने अपने संदेशों में हमें और क्या लिख के भेजा है। तिलंगपुर कोटला दिल्ली से मधुबाला हमारे साथ जुड़ी हैं और अपना फरमाइशी गीत भी भेजा है। शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर, दिलीप, संजय सोनी, अरुण कनौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रज्जन, रजक, लालू, सोना मोना, हनी यश और उनके मम्मी पापा सभी कार्यक्रम में गीत सुनना चाहते हैं। अपना फरमाइशी गीत लिख भेजा है इन्होंने। आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सरधना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान और मास्टर जीवम हमारे साथ जुड़े हैं। खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू भी सुन रहे हैं कार्यक्रम। महाराष्ट्र से संदेश आया है, पुणे से सुनील, सुषमा, अनन्या और राजवीर लिख रहे हैं हमें कि पुणे में 4-5 दिन से बहुत बारिश हुई और अभी जरा रुकी है और मौसम बहुत बढ़िया हो गया है, तो इसी बहाने सुनना चाहते हैं एक मौसम वाला गीत। तो आइए पहले आप ही की फरमाइश पूरी करें एक अच्छा सुंदर मौसम वाला गीत आपके लिए।

आइए श्रोताओं, फिर सुने आपकी आवाज। राम लिख रहे हैं हमें, पलवल से इन्होंने अपना गीत भी लिख भेजा है। तेलंगाना से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फजान फरहान और समीरा आजमीन इनके साथ हैं। आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद, अर्णव, दुर्गेश्वरी, राखी और तृप्ति हमारे साथ हैं। परवेज आलम लिख रहे हैं हमें चंपारण मोतिहारी बिहार से। देवदत्त परसौलिया जुड़े हैं हमारे साथ प्रताप विहार गाजियाबाद से और अपना फरमाइशी गीत भी लिख भेजा है इन्होंने। पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती हमारे साथ जुड़े हैं। राम नरेश, रेखा, करण, अल्पाश, रघु, रचना, सृष्टि, सावी हमारे साथ जुड़े हैं संगम विहार ने।

दिल्ली से। हरि प्रसाद विश्वकर्मा जुड़े हैं हमारे साथ मध्य प्रदेश से। और आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं एक फरमाइशी गीत। इस गीत की फरमाइश आई है हमारे पास सीटी दीवाना सुखविंदर सिंह जौड़ा, इनकी दिल्ली से। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन, मंगला बेन और राजेंद्र जी भी हमें इसी गीत की फरमाइश कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये गीत, जो मौसम के साथ साथ सभी को अच्छा लगता है।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
0: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं प्रियांशी आपके साथ जुड़ी हूँ कार्यक्रम दिल का मेलबॉक्स में आप सभी के मनपसंद गीतों और हार्दिक संदेशों के साथ। तो श्रोताओं, हमें जल्द ही लिख भेजिए अपना मनपसंद गीत, संदेश, नाम और शहर और भेज दीजिए fmgoldaiardelhi@gmail.com पर या व्हाट्सएप करें 9868686753 पर। तो आइए आपके कुछ और संदेश जल्दी से पढ़ लें। हिसार से राजकुमार, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र का संदेश हमें प्राप्त हुआ है। मकलापुर से नारायण इंगले, सोपान ताइडे, राजकुमार और आशीष हमारे साथ हैं। नलेश्वर नगर से PS नावकर, निर्मला और विशाल हमारे साथ हैं। शाहजी नगर महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता हमारे साथ हैं। पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम और बेबी वामिका और वाणी हमारे साथ हैं। मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा, भाई जान, भाई राजकुमार बुड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप हमारे साथ जुड़े हैं। और सनावद मध्य प्रदेश से ये हमारे साथ जुड़े हैं। महाराष्ट्र से रंजीत कारेगावकर, कंचन, सृष्टि और समरजीत भी हमारे साथ हैं। और दिल्ली मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु, सागर और सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक और आकांक्षा मलिक हमारे साथ हैं। आइए श्रोताओं, इनकी फरमाइश पर सुनते हैं ये बहुत ही मधुर गीत।

0: श्रोताओं, आपके संदेश, आपके अनुरोध और आपकी संवेदनाएं ही इस कार्यक्रम की रूह हैं। अपना प्रेम और प्रोत्साहन ऐसे ही भेजते रहिए, हमें अत्यंत प्रसन्नता होती है। आपके हर संदेश में स्नेह, विश्वास और आपका अपनापन अलग ही छवि में झलकता है। मिलते हैं समाचार के पश्चात, 11:25 पर मिलेंगे और चलेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट खजुराहो। तब तक प्रियांशी भटनागर का आपको नमस्कार। सुनते रहिए एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, व्यापार, शिक्षा, हिंद प्रशांत सुरक्षा, निवेश और जन संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत ऑस्ट्रेलिया के मजबूत संबंधों के लिए द्विपक्षीय समर्थन की पुष्टि की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों तथा भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की अपनी ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न कर ली है। इस यात्रा ने भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को भविष्य के अनुरूप एक नई दिशा और मजबूत आधार प्रदान किया है। यात्रा के दौरान उच्च स्तरीय कारोबारी बैठकों से लेकर प्रतिष्ठित स्थलों तक दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। इससे पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति व्यक्त की। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय

0: संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
1: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
0: प्रधानमंत्री तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ओमान पहुंच गए हैं। ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्कारी ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान की शुरुआत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है।
2: विगत 12 साल में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ सीमा सुरक्षा के लिए काम हुआ है। सबसे पहले बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर राजस्व खर्च होना, इसकी प्रायोरिटी चिन्हित करना और चिन्हित प्रायोरिटी पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना। हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो 2013 का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और आज के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में 400% का परिवर्तन है। बॉर्डर सुरक्षा की पहली जो रिक्वायरमेंट थी, बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, इसको सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से किया है।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक एक दिवसीय टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Sunil Verma. Prime Minister Narendra Modi has officially concluded a historic high-stakes state visit to Australia, leaving behind a future-proof blueprint for the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership. From high-powered boardrooms to iconic landmarks, this intense itinerary systematically advanced diplomatic, economic, and security ties between the two democratic giants. The economic momentum ignited early with the India-Australia CEOs Forum, where business leaders celebrated a 55% surge in two-way trade driven by the 2022 ECTA agreement. To unlock further potential, Prime Minister Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese fast-tracked negotiations for the Comprehensive Economic Cooperation Agreement, CECA. The bilateral talks scaled a historic milestone in clean energy with the finalization of the administrative arrangement enabling long-term Australian uranium supply to India, reviving a foundational 2014 framework. Strategic security also took center stage as both maritime powers adopted a joint declaration on defense and security cooperation alongside a maritime security collaboration roadmap to ensure a free and open Indo-Pacific. The tour's unparalleled public resonance was on full display at the Melbourne Meets Modi Diaspora Rally

0: हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आनंद
1: और मैं अदिति।
0: हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोग्राम मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। मेरा वजूद के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन रियल एस्टेट के रेफरल प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपना वजूद बना सकते हैं,
1: क्योंकि मेरा वजूद का लक्ष्य ही हर व्यक्ति को रियल एस्टेट के लाभ से जोड़ना है। अब आप चाहे हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो या रिटायर्ड पर्सन, जब ऑनलाइन का है जमाना तो ऑनलाइन से ही कमाना सही है ना?
0: दोस्तों, कुछ रिश्ते जिंदगी में ऐसे होते हैं जिनकी गहराई और सच्चाई वही जान सकते हैं जो इस रिश्ते में रहते हैं। प्यार, भरोसा और साथ, ये तीनों ही चीजें इस अनमोल रिश्ते की पहचान होती हैं। ये जिंदगी में एक ठहराव देती हैं। अब वो आपकी कोई समवन स्पेशल हो सकती है या फिर आपका जीवन साथी।
1: दोनों ही सूरत हाल में वो आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है जो आपको आपकी जिंदगी के किसी भी मोड़ पर लड़खड़ाने से बचाने के लिए हमेशा तैयार रहता है, क्योंकि हम सब की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त जरूर आता है जब लगता है कि शायद अब मेरा साया भी मेरा साथ छोड़ देगा।
0: हो सकता है कि किसी की नौकरी जा रही हो, हो सकता है कि कोई किसी बीमारी से परेशान हो, किसी को बिजनेस में कोई नुकसान उठाना पड़ रहा हो,

0: कौन जानता था कि मेरे मल्टीटास्किंग स्किल्स एक दिन मुझे कमाई भी कराएंगे।
1: न मेरे कोई दुकान, न मेरा कोई ऑफिस, मेरा मोबाइल है मेरी दुकान,
2: मेरा वजूद। बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
3: वैसे आजकल के नौजवानों में एक खास प्रॉब्लम है, वो ये कि पलक झपकते ही किसी से भी दिल लगा लेते हैं। जरा सा कोई लड़की हंस बोल क्या ले तो बस बज गई दिल की घंटी, और उसके बाद दिन भर बस उसी का नाम और नहीं कोई और काम।
2: हालांकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि अट्रैक्शन दोनों तरफ से हो, लेकिन वक्त चाहे जो भी रहा हो, चाहे वो गुजरा हुआ जमाना हो या आज का, प्यार खुद ब खुद हो जाना या किसी को चाह लेना शायद जिंदगी के साथ के लिए इतना आसान नहीं होता।
3: क्योंकि जिंदगी की एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि प्यार को निभाने के लिए दोनों में से किसी एक को, खासकर मेल को, अपनी लाइफ में स्टेब्लिश होना बहुत जरूरी है। ये जरूरी है कि उसका अपना एक वजूद हो, उसकी खुद की अपनी एक पहचान हो।
2: मगर कमबख्त ये प्यार कुछ चीज ही ऐसी है जिसे इन सब बातों से कोई लेना देना है ही नहीं। मगर फिर जब वक्त और हालात इन दोनों को मिलने नहीं देते तो जीवन में बाकी रह जाती है तड़प और ढेर सारा दर्द। कौन सही था, कौन गलत, ये कौन जान सकता है।

0: दिन बस नाश्ता लंच और डिनर सबकी जरूरतें पूरी करते करते जाने कब मेरा खुद का वजूद कहीं खो गया। क्या मेरी पहचान बस यहीं तक है?
1: मेरा वजूद बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.merawajood.com पर।
2: मशहूर शायर मिर्जा गालिब ने कहा है कि इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब की लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। यानी इंसान अपनी मर्जी से ना तो किसी से प्यार कर सकता है और प्यार हो जाने पर किसी को भुला सकता है।
1: आपने ऐसे बहुत से लोगों के बारे में सुना होगा जिनके इश्क के चर्चे आम हो गए। कहीं सुना होगा कि कोई स्त्री अपने बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ कहीं चली गई। तो कहीं सुना होगा कि किसी लड़के ने अपने प्यार को पाने के लिए किसी को नुकसान तक पहुंचा दिया।
2: तो कहीं किसी लड़के ने अपनी पसंद की लड़की से शादी करने की खातिर अपने घर परिवार को और समाज को भी ठुकरा दिया। समाज में ऐसे कई एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जहां लड़की और लड़के की उम्र में बहुत अंतर रहा होगा या फिर दोनों की फाइनेंशियल स्टेटस में भी बहुत अंतर रहा होगा।
1: अब कहने वाले चाहे जो कहें, सच तो ये है कि दिल अगर किसी पर आ गया,
2: दिल में तो, सांसों में तो, ख्वाबों में तो, ख्यालों में तो,
1: क्या मंदिर, क्या मस्जिद और क्या काबा,
2: मेरे जज्बात में तो, मेरी पहचान में।

0: हम गृहिणियों को मोहल्ले की हर खबर रहती है ना, कौन सा घर बिका, कौन सा खाली है, बस यही जानकारी मैंने मेरा वजूद पर डालना शुरू की। अब मैं बिजनेस भी संभालती हूँ।
1: मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
2: दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरा वजूद,
1: बताओ और कमाओ। इसे आप अपना हाई अर्निंग साइड इनकम का इनोवेशन भी कह सकते हैं। बस आपको जेन्युइन प्रॉपर्टी परचेजर सेलर की डिटेल मेरा वजूद एग्जीक्यूटिव के साथ शेयर करनी है।
2: ना कहीं आना और ना ही कहीं जाना, बाकी के सेल परचेज देखेगी हमारी कंपनी और फिर आपका फायदा ही फायदा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें मेरा वजूद 9355-387-21 पर।
3: इतनी परेशान क्यों लग रही हो?
4: मन करता है कि तुम्हारा हाथ बटाऊं, पर मुझे नौकरी देगा कौन?
3: आज तुम जैसी हजारों महिलाएं घर बैठे अपनी नॉलेज और नेटवर्क से लाखों कमा रही हैं।
4: कैसे?
1: मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.मेरा